अकाल मूरत अजूनी शैपंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी सच।

गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरे दूत दुष्ट बहराही,

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिह सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिह ध्यान लहिया पौ मुकह गुर अमरदास परसिह अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानु वैल है

0: चिट्टे वस्त्र पहना दिते। गुरु अंगद साहब ने प्यार नाल सिंघासन ते बिठाया ते संगत विच भरी विच कहा, मेरे पुत्रो, मेरे सिखो, मेरे भरावो, अज तो बाद गुरु नानक दे तख्त दा मालक बुजुर्ग बाबा अमरदास है। अज तो बाद अंगद दे दर्शन तुसी गुरु अमरदास विचों करने। पहली नमस्कार गुरु अंगद साहब ने की, जदों गुरगति ते विराजमान हो गए। मैं सिर्फ 5-4 मिनट कह के समाप्ति करना। जे गुरु अमरदास दे पूरे दर्शन करने जो ना, तो भट्टा के सवैया 22 सवैये गुरु अमरदास जी की उस्तत विच ने। एक शब्द भट्ट ने बड़ा सोहना कहा, कह लगे, ए मित्रो, जे तुसी सफल होना तो गुरु अमरदास दे दर्शन करो। कह लगे, अपनी अखां नू अपनी जबान नू ए रसना, जे तू सफल होना तो गुरु अमरदास क्या कर धन गुरु अमरदास। जे कन्नों तुसी सफल होना गुरु अमरदास की बाणी सुनो। जे चरणों तुसी पवित्र होने ते गुरु अमरदास के राह से तुरो। ते कह लगे, जे दो हथां नू पवित्र करने ते गुरु अमरदास के चरण घुट के पकड़ लै। जे हिरदे नू पवित्र करनी ते हिरदे विच गुरु अमरदास की बाणी नू टिका। भट्ट ने शब्द क्या, चरण ता पर सकिया ते चरण गुरु अमर पवल रहे, हथ ता पर सकिया ते हथ लगे गुरु अमर पै, जी ता पर सकिया ते जी गुरु अमर भरीजै, नैण ता पर सकिया ते नैण गुरु अमर पखीजै, सरवण ता पर सकिया ते सरवण गुरु अमर सुणीजै। ए गुरु गोबिंद साहिब दे बचन ने। कह लगे, हियो ता पर सकिया ते, जे हिरदे नू पवित्र करने ते हिरदे विच गुरु अमरदास नू टिका लै। ते पुछया, इहदे प्रश्न नाल होवेगा की? ते अगला सवैया सी, गुरु अमरदास परसिया तोहम पातक विनाश है। गुरु अमरदास दे चरण धरती ते पै गए, धरती दे पाप दूर हो गए। गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसास है, गुरु अमरदास परसिया ध्यान लईए पौन कै, गुरु अमरदास दे परसु नाल ध्यान जुड़ जांदा है। गुरु अमरदास परसिया अभौ लगदा है, निर्भयता मिलदी है, गौ चुका है, जन्म मरण का चक्कर मुक मिट जांदा है। अगला बचन सी, एक दिन दर से एक नाल पछाण आ जांदी है। एक दिन दुगण जो तौर है, जास मंत्र मान वैल है, जालपा पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिथ है मिले। जदों गुरु अमरदास की महिमा की ते पता ने अंतला बाहिया सवैया जिहड़ा कहा, बस गल ही कोई ना रहन दिती। पुछया, गुरु अमरदास के किन्ने कु गुण ने? ते भट्ट ने बड़ी उच्ची आवाज विच कहा, कह लगा, मीह पैंदा मनुख ए तो दस देगा अज मीह पैणा, पर यह नहीं दसेगा अज बदलां विचों किन्ने हजार किन्ने करोड़ बूंदा डिगरियां। बसंत की रुत विच फुल खिड़दे ने, फुलां की गिनती नहीं, आ धरती के रुखां की गिनती नहीं, समुंदर दियां उठ दियां लहरां नूं कोई नहीं गिण सकता। पर कह लगे, हो सकता है आने वाले समय विच कोई अडोल समाधि ला के बदलों दियां कन्नियां नूं भी गिण लै। मीह पैण लगे वक्त बसंत की रुत विच एक एक फुल नूं भी गिण लै, बनाशपति नूं भी गिण लै, समुंदर दियां लहरां की भी गिनती कर लै। पर गुरु अमरदास जिन्नी कु सेवा ते सिमरन तू कर चुके है, बंदा जिन्नी मर्जी वाह ला लै, एक दावा करनी है तेरे गुणा का अंत किसे नहीं होगा। भट्ट ने ता ही कहा, कन हर बूंद ते बदलां दियां कड़ियां, बसो रुमावल कुसुम बसंत गणंत न आवे, रस किरण उतर सागर को, गंध तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कब जन भल उन्हें जो गावे। पर नाल कह दिता, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो बन आवे, तेरे गुणा का कोई अंत नहीं। आओ प्यारे, उस गुरु अमरदास जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के 17 रागां विच दर्ज है। तो मेरा गुरु इको गल कहिंदा, जे कुछ लैणे फिर जुड़ के कह, हस्ती सिर जो अंक सह, एरन जू सिर दे, मंतन आगा राख कै, ऊ भी सेव करे। जब इनी सेवा करेगा, इं गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काले। इनिया को बेनतियां प्रवान करनिया, खोईया बेअंत भुला कृपा करके बख्श देनिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता ले रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइय, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के शिक्षा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणिया, बाबा नानक जी नूं जोगी मिलिया, इन्ने गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्हां ने प्याला भर के नशे दा पेश कीता है, शराब दा पेश कीता है। ते बाबा जी पुछदे ने इह की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक इहदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलो इह प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाई है, भांडे उपर जेड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, तो उहदे चार चफेरे असी मिट्टी का पोचा फेरिया, तो थल्लो अग बाली, तो जेड़ा इहदा अरक निकलिया इहनू असी रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए तो रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछिया इह रस किवें तैयार हुंदा, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान
परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुर बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी पवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी पवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुआईया एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ चुआईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रस रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस दा अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भई ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए दी पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब दी दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी भगत रविदास जी दा इक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सलल कृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सलल कृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान पै करदे ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर ते दौड़दा पिया पिंडे ते पानी पै रहा पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुक्कां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है
ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਝੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਏ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ

0: सकना है, उनके ध्यान करना है, तो सतगुरु गुरु का अनुग्रह हम लोग सारे कर्मों में मुकदम है। आप भी जो कहा कि हम गुरु कर रहे हैं वो सभी बहने हैं, इसलिए सारी संख्या बेनती है अपना मन बढ़ा के सभी तरह मारा सदगुरु को भी प्रकार कर दिए सबसे प्राप्त करो और अपने जीवन सफल बनाए। बहुत सारे लोग बाल कार्य को श्री शंकर सहवान में लड़ी चल रही है, जिस करके संख्या हम लोग काफी जरूरी है, संस्था की मेरी चलती है, सारी संस्था बड़े ख्याल है, गुरु का अनुभव किए हैं, सुबह सेवा भी दिशा पा रहे हैं, इसमें सारी संस्था का तो संवाद है, ग्रह को दो बना ले, सभी कथा दूर जाओ, अरे अपने जीवन में गुरु का नाम जोड़ो, और हमारा संस्था का नाम जोड़िए, दो ही घंटे बाद से संस्था के आम जोड़ी कथा के नाम जोड़ेंगे,
1: ठाकुर।

एकाग्रता दे नाल और बड़े भावपूर्त शब्दां विच महापुरुषां तों अमृत दे संबंध विच विचारां सरवण कीतियां ने, क्योंकि पिछले कुछ दिनां तों निरंतर आपां अमृत दी गुरबाणी दी रहत दी गल करदे आ रहे हां, ते आखिर इस विचार दा भाव केवल इतना है कि किते अमोड़ मन दियां वागां सतगुरु दे हथ विच पकड़ा दईए ते एक गुरमुख दे गाड़ी राह उत्ते चल पवे। आओ करो कृपालता साध संगत जी के पिछले कुछ दिनों तो आपा एक लड़ी आरंभ की है। पहले दिन जिस दिन वैसाखी के संबंध विच विचार आरंभ की सी, आरंभ वाले दिन बेनती की सी के इस जीव का सतगुरु के शब्द तो बिना सहारा कोई नहीं। दूसरे दिन बेनती की सी के अमृत की दात अमृत है कि कल आप जी दे समक्ष वैसाख दे महीने और वैसाखी दे संबंधी विचार कीते सन, ते देखो ऐद की मालक ने सबब किहो जिहा बनाया है। कई बारी कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने जदों कुदरती तौर ते इतिहासिक घटनावां मेल खांदियां ने ते मनुख दा अंदर प्रसन्न होके कहिंदा मेरे दाता साड़ी कीती हुई इस सेवा नूं तुसी कबूल कर दे पहे। कल बुधवार सी, वैसाख दा महीना सी आरंभ होया, उस दिन दातार जी ने अमृत दी दात दिती। मैं हैरान होया, रतन सिंह भंगू दा प्राचीन पंथ प्रकाश अज पढ़ रहा सा, ओ कहिंदा सन 1756 नूं जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत दी दात दिती उस दिन भी बुद्ध वेले दा बुधवार दा अमृत वेला सी। कल भी बुधवार सी, ते जिस दिन कलगी वाले ने अमृत दी दात दिती

उस दिन भी बुधवार सी। आओ गुरमुखो जेड़ी विचार आपां कल छड़ी सी क्योंकि लड़ी का ख्याल जरूर हथ रखिए। आपां विचार आरंभ कीती सी वैसाख भला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आओ दया करे घर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अज ना मोलो कह लगे कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो कह लगे दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना नानक वै साखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन मन। आओ इसे शब्द नु आपां अगे लै तुरने गल अमृत दी होनी है। आपो अपना ढंग है आपो अपनी गल करन दा तरीका है पर गल करन दा मकसद केवल कलाकारी नहीं गल करन दा पावे साडे कहण वालियां विच ते सुनण वालियां दे हिरदे विच गुरु दा शब्द ते गुरु का अमृत टिक जाए। आओ करो कृपा साध संगत जी विचार आरंभ करन तो पहला आप एकाग्रता इसे तरह बख्श देखो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब धन गुरु नानक साहिब जी का तुखारी राग का यह वचन के वैसाख दे महीने विच एक जीव इस्त्री जा एक जिज्ञासु उस परमात्मा दे चरणा विच बेनती करदा है मालिक जी वैसाख दे महीने विच रुखां दियां करुंबलां नवियां निकल आईयां ने उन्हां ने शिंगार कर लिया है पुरातनता नूं त्याग के मैं अपने तन ते शिंगार कैसा करां ते अपने घर दा दरवाजा खोल के तेरी इंतजार पे करनी आ कि तुसी दया दे घर विच आ के मेरे घर विच चरण पाओ। ध्यान दिया जे ब्रिजा ले जाना आपां अमृत वाले पासे पहलियां तुकां सन के वैसाख भला साखा वेश करे तन देख है हर द्वार तन दा अर्थ जीव रूपी इस्त्री क्योंकि बाणी विच तन दा अर्थ दो तीन आए ने खास करके तन दा अर्थ हुंदा है दौलत तन दा अर्थ हुंदा है इस्त्री तन दा अर्थ कच्ची दौलत तन दा अर्थ नाम धन ते तन दा अर्थ है तनता योग भी। मैं संखेप विच अर्ज कर जावां जदों असीं पढ़ने आ तन फिर ए ना आखी है वैन इकट्ठे होए उथे धन का अर्थ इस्त्री जदों असीं पढ़ने आ काचा सन धन संचय मूल गावार उथे कच्चे नाल जदों धन शब्द आया उथे धन का अर्थ दौलत जदों असीं पढ़ने आ ए धन नखुट नान खुटै ना जाए ए धन अखुट नान खुटै ना जाए उथे धन का अर्थ नाम धन जदों असीं हजूर दे बचन पढ़ने आ वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन पुरसोई उथे धन का अर्थ धनता जो। इथे शब्द है कि धन देख है हर द्वार एक जिज्ञासु जीव अपने दरवाजे ते खलोती इंतजार पे कर दिए ते कहन लगे धन देख है हर द्वार आओ घरे घर आओ प्यारे फिर दोबारा तुख शुरू हुंदी हे प्यारे जी तुसी मेरे घर विच आओ क्यों दुत्तर तारे जेड़ा दुष्टर संसार तरिया नहीं जांदा ए मेनू तार दियो ते नाल वचन कीता तुत बिन अड ना मोलो अड दा अखर अखरी अर्थ ते अधा नहीं अड दा अर्थ करांगे अद्धी कौडी शब्द है। कहन लगे हे प्यारे तेरे तो बिना मेरी अद्धी कौडी भी कीमत नहीं। देखो हुण तुक नूं कदी पढ़ियो बाबे नानक दा तुखारी वैसे कदी समा मिलिया ना ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਖਾਰੀ ਬਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਾਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਬਾਰਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਖਾਰੀ ਬਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਮੋਲੋ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ

लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन।

लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन।

गुरु जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

एक पद है पर उन्हों आखे परम पद सोदे कोल परम पद है बाकियां कोल पद है ते इतनी गल भी स्पष्ट है चाहे पद है ते चाहे परम पद है उत्थे तक पहुंचन लई ते कुछ ना कुछ संघर्ष ते है बिना संघर्ष तो पद प्रतिष्ठा दी सिंघासन दी प्राप्ति नहीं आती। सिंघासन दो तरह दे एक नूं आखिया गया राम दा सिंघासन हरि दा सिंघासन परमात्मा दा सिंघासन एक नूं केवल इतने ही आखिया गया राज सिंघासन सिर्फ राज सिंघासन जो राज सिंघासन ते बैठा है उदे कोल पद है जो राम सिंघासन ते बैठा है उदे कोल परम पद है ते परम पद राम सिंघासन दी सारी व्याख्या कीती है गुरु घर दे महान दार्शनिक ते गुरु घर दे महान भाई संत ब्रह्म ज्ञानी ते वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास जी। मैं अक्सर गुरुद्वारियां दे सिख संगतां दे सामने बेनती करदा हुंना कि भाई गुरदास साहिब नूं पढ़े बिना गुरमत दी सूझ लैणी बड़ी औखी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं असीं पढ़ांगे सुणांगे परमात्मा दी सूझ मिलेगी अकाल पुरख दी सूझ मिलेगी पर जद भाई गुरदास जी नूं पढ़ांगे ते गुरमत दी सूझ मिलेगी गुरु दी समझ पाएगी गुरु दी अजमत दा पता चलेगा। इस वास्ते भाई गुरदास जी दी ये महान देन है कवित सवैये ते वारां वारां आपदी पंजाबी दे च ने ते कवित सवैये ब्रिज भाषा दे च ने ते जो आप दे कवित सवैये ने उन्हां दे च पंज सत सवैये ने जिन्हां दे च एक सवैया उसे दी ही विचार दास ने इस वक्त थोड़े सामने रखनी है ते मैं फिर अर्ज कर रहा चूंकि सुभाव विच यही गल है कि गुरबाणी दी कोई पंक्ति या भाई गुरदास जी दी कोई पंक्ति या नंद लाल दी कोई गजल उन्हों आधार बना के मैं संगत दे सामने विचारा रखने दी कोशिश करदा हुना। आधार केवल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी या भाई गुरदास जी दी रचना या नंद लाल दा कलाम तो अज मैं आधार बनाना अपने विचार दा भाई साहब भाई गुरदास जी दे एक सवैये नूं सवैया आप सरवण कर लो। भाई साहब कहिंदे ने जत सत सिंघासन सहज संतोख मंत्री धर्म धीरज ध्वजा अब चल राज है शिव नगरी निवास दया दुल्हनी मिली भाग तो भंडारी भाव भोजन सकाज है राज नीत रीत प्रीत छत्र पत्र छे छत्र छाया छबे छाज है आनंद समो सुख शांत प्रजा प्रसन्न जगमग जो अनहद धुन गाज है इस वही है। और इस तो पता चलता है कि भाई साहब की दृष्टि हर एक पासे है दृष्टि मैं कह रहा नजर। इकबाल कहते ने दो ही तरह के महान मनुख होंगे ने दो तरह के एक वो जो संसार नूं अपनी नजरां दे थले रखते ने एक वो जो संसार नूं अपने पैरां दे थले रखते नजरां दे थले अख दे थले। अख महान है शरीर दे किसे अंग विच पीड़ा होवे दर्द होवे अख रो पैंदी है। इस विषय दे उत्ते बहुत वड्डी नज़म लिखी है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने और भाई गुरदास जी दी इस रचना दी बड़ी सोहनी तशरीह हो जाती है कि संत ते भगत जो है वो जीवन दा है अख दे तल ते ते जिहड़ा कोड़ा संसारी है ते उहदे कोल ताकत बड़ी होवे वो जीवन दा है केवल पैरां दे तल ते

सिद्ध और बुद्ध बुद्धि विच सारा ज्ञान आ जांदा है, सिद्धि विच सारी संपदा आ जांदी है। तो सारी संपदा बंदे नूं मिल जाए, सारा ज्ञान बंदे नूं मिल जाए, तो होर किसे चीज की फिर लोड़ रहिंदी नहीं, मनुख दे अंदर कोई भुख रहिंदी नहीं। पर परमात्मा तो छुट परमात्मा नूं एक पासे रख के सनातन मत ने इस भुख की पूर्ति गणेश से सृष्टि नाल जोड़ी। वो सृष्टि जो है वो बुद्ध दाता है और गणेश जो है यह सिद्धि दाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगलाचरण आरंभ किया है उसका पहला अक्षर है एक, एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला अक्षर एक, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो मंगलाचरण है गुरमत दे जो मंगलाचरण है उसका पहला अक्षर है एक। जपजी साहब का जो मंगलाचरण है उसका अक्षर पहला है एक। एक गिनती दे से उंज हिंसा है, पर गुरु नानक की रचना तो हिंसे के रूप च नहीं निकलिया, एक खसम की बाणी ब्रह्मवाक के रूप च निकलिया एक। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने एक है अनेक है अनेक है फिर एक है। फिर साहब ऐसा भी कहते ने एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। सारी अनेकता का जो आधार है वो एक है, ते इसे एक तो यह सारी अनेकता का जन्म है, एक मूल है, एक जो है आधार है। लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने। जो अनेकता है इनू संसार कहने ने, जो एक है वो करतार है। जिथे तक आत्मा का गल है विचार चलेगी आत्मा की उसे एक है साढ़े शरीर दे, पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने। हुण एक बंदे दे सिर्फ कोई एक ही रूप दे उत्ते उसकी होंद नहीं खड़ी, अनेका रूप ने। एक बंदा जे किसी का प्यो है तो फिर किसी का पुत्र भी है, जे किसी का पुत्र है किसी का पति भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी है। बंदा एक है तो रूप उसके इतने ने। मनोविज्ञानी कहते ने जब बंदा पुत्रां दे सामने पिता दे रूप दे जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक मंडल कुछ होर होंदा है, ओही मनुख जब प्यो दे सामने पुत्र दे रूप च जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मन दे भाव कुछ होर ही होंदे, ओही मनुख जब पत्नी दे सामने पति दे रूप च जांदा है ते चेहरे दा रूप ते मानसिक मंडल मनुख का कुछ होर हो जाता है, उही मनुख जब मित्र दे सामने मित्र दे रूप च खड़ा होंदा है, पड़ोसी दे सामने पड़ोसी दे रूप च खड़ा होंदा है, तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक संस्कार कुछ होर आउंदे ने। उही बंदा जब गुरु दे सामने सिख दे रूप च खड़ा होंदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दियां तरंगा कुछ होर आउंदियां ने। हुण बंदा एक है ते रूप इस दे इतने ने, एक किसे दा सिख भी है किसी का पुत्र भी है किसी का भरा भी है किसी का पिता भी है किसी का पति भी है किसी का पड़ोसी भी है किसी का दोस्त भी है। जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने। जे नारी किसी की मां है तो किसी की भैन है किसी की धी है किसी की पत्नी है किसी की सहेली है तो किसी की सिखणी है। मनुख पूरन ओही है जिदे ये सारे रूप बेदाग होवन। ए सारे रूप मैं हैरान हाँ जिन्हां दे हथ सता आउंदी है, कई दफा देखी दा समुचा देश ते ओदी सारी ताकत किसे दे हथ समेट दई दी है ते कम से कम ओदे सारे रूप ते वेखने चाहिदे ने, किधरे ऐसा तो नहीं ओदे सारे रूप दागी ने। जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबित हो सकी, पिता पिटदा ही रहा, आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के, और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया, चंगी पुत्री नहीं साबित हुई। अगां चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबित हुई। पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा, तलाक होई, पुछण तक नहीं गई, चंगी पत्नी नहीं साबित हुई। अगां

कृष्ण ने कह दिता मैनू ये मर्यादा प्रवान ही नहीं कबूल नहीं मैं नहीं प्रवान करता। इस वास्ते कृष्ण नू किसी ने मर्यादा पुरशोत्तम नहीं आख्या लीला पुरशोत्तम आख्या। लीला पुरशोत्तम जन्म एक लीला है मरण एक लीला है नफा एक लीला है नुकसान एक लीला है तो रोना केड़ी गल दा। इस वास्ते हंजू श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है रोना पिटना श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है। दुख है सुख है हान है लाभ है ग्वालियां नाल गौवां चारना है या द्वारका के सिंघासन ते बैठना है दर दर की खाक छाननी है या गले विच मोतियां दी माला पहननी है। कृष्ण की जिंदगी नचदी हुई टपदी हुई मुस्कुरांदी हुई है। इस वास्ते साडे देश दे कुछ आलमां ने इंज कह दिता कि राम अंसा अवतार ने श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार ने। यह तो खुद हिंदू कहते जो ब्राह्मण कथावाचक कहते उन्होंने बोल जो उन्होंने धर्म ग्रंथां विच लिखे है उन्हां दियां विचारां मैं थोड़े सामने रख रहा हां। अपने तरफों एक अखर भी नहीं एक शब्द भी नहीं। लीला परशोत्तम जिंदगी सारी मुस्कुरांदी हुई उस तरह की मर्यादा जो जीवन नू रुला के रख देवे और खुशकसाली ते बंजर बना देवे वो कोड़ियां मर्यादावां कढ़ दित्तियां। सवाल यह मर्यादा मनुख लई है कि मनुख मर्यादा लई है। मर्यादा दे उत्तों मनुख नू कुर्बान करोगे या मनुख दे उत्ते मर्यादा कुर्बान करोगे। श्री कृष्ण ने चोण की जिथे दोवां नू चुणन की गल आवे उत्थे मैं मनुख नू बचावांगा मर्यादा नू कुर्बान कर देवांगा। मर्यादा तो यह है सच बोलना है पर जो मैं झूठ बोल के भी पांडुआ जिताना हो जितावगा उन्हें झूठ बोलिया मैदान ने जंग अश्वथामा हथो अश्वथामा मर गया। युधिष्ठर नु कह मर्यादा तो यह है परम पुरख सच बोले असूल तो यह है परंपरा तो यह है। कह लगे नहीं अगर इस मर्यादा विच पांडु मर गए तो पांडुआ का मरना मजलूम का मरना है पांडुआ का मरना सच का मरना है पांडुआ का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा। इन्हों की मौत मैं कबूल नहीं मैं झूठ भी बोल रहा बोले है। और मैं अर्ज करा सारी जिंदगी का अध्ययन करो मुताला करो तुम मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी। जो जो मैं जोड़ छली चंद्रावल कान किशन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंदरा बन में रंग गया। हुण जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नूं लैंदा गया चचेरी भैण सी राधा दी और उत्थे मर्यादा नूं सामने रखी ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते कृष्ण कर सकता राम नहीं कर सकता। सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की कृष्ण ने सुभद्रा दे हरण देच ये राम नहीं कर सकते। ते जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी कहण लगे सब कुछ लीला है अगर हिरदा शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है अगर हिरदा अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। इद उत्ते एक गाथा है मुख्तसर वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहिंदे ने सखियां श्री कृष्ण दिया जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन कराना चाहदियां सन पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी पार जाना बड़ा औखा ओ जमाना जब पुल नहीं आते सन लोग तैर के पार करते सन उंज लंघ के पार करते सन या नौका ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईयां श्री कृष्ण जी पास भई दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन जरूर छकाना ते की करिए सारियां सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल। श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है जे कृष्ण जती है ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कहन जमुना ने रस्ता दे दिता ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे दुर्भाषा सारे ही खा गया हैरान हो गया इतना खा के ये निराहारी है

स्वभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्हें दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्हें दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

पहो निरंकार भव खंडन साव सुख नाव निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थान दिया सुखदाता निखुट ना कब ही जाए आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

0: हिंदू नहीं चाहिए, बस इन्नी गल के इशारा कर दिता। अद्धी रात दे वक्त मुराद आया, नंद लाल दे कोल सुते भाई साहब नू जगाया, आख्या मेरा घोड़ा ले लो, नस जाओ, बच जाओ, निकल जाओ, क्यों थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे दे च है, थोड़ा ईमान खतरे दे च है। तुसी मेरे मित्र हो, मैं मित्रता निभाण दे नाते आया, ते मेरा घोड़ा लो, इस ते बैठो ते दौड़ जाओ, भज जाओ। नंद लाल कहिंदे ने मित्रा किथे भज जावां, सारे भारत दे च राज इसदा ही है, जिथे जावांगा पकड़ा जावांगा, किथे भज जावां, सारी जगह ते इसे दा हुक्म चलदा है। मुराद ने कहा एक थां ऐसी है जिथे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, धन गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। ओ केड़ी थां है, ओ केड़ी जगह है, ओ आनंदपुर साहब है, उथे बज जा। रात नूं सफर करदे सन, दिन नूं किधरे छुप जांदे सन, मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे, सतगुरु दे दरबार विच हाजरी भरी, मत्था टेकिया ते कहन लगे महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे ही रहना, हुण मेरा दर घर यही है, मेरा सहारा तुसी हो, इत्थे ही रहना है। हां महाराज मैं इत्थे रहना, खुशी नाल रहो। तीन चार दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नूं कहन लगे महाराज जद मैं इत्थे रहना है ते आपने रख लिया ते कोई सेवा बख्श दो मैनू। ते सतगुरु कहन लगे की कर सकदा है तू, तैनू की आउंदा पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हां, मैं रोशन जमीर हां, मेरी कलम चो नगमे निकलदे ने, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकलदे ने, फिलसफा निकलदा है, ज्ञान निकलदा है, विचार निकल रहे हैं, मैं चिंतक हां, मैं अजीम शायर हां, मैं कलम दा धनी हां, दिमाग दा धनी हां, जबान दा धनी हां, रोशन जमीर हां, ऐसा मैनू सारे कह दे रहे। सतगुरु कहन लगे तू रोशन जमीर है, हां रोशन जमीर हां, दिमाग दा धनी है, धनी हां, इत्थे रहना भी है, हां महाराज रहना भी है, ते सेवा भी करनी है, हां महाराज सेवा भी करनी है, अच्छा तू बस लंगर दे पांडे ही मांझिया कर, बाकी छड़। कहन दिल नंद लाल दा बड़ा टूटिया, हद हो गई, मैं दस भी दिता है, शायर हां, अतालीक हां, रोशन जमीर हां, रोशन दिमाग हां, कोई लिखण पढ़न दी सेवा दें दे, पढ़ाण दी सेवा दें दे, लंगर दे पांडे मांझ कदी मांझे नहीं सन, दीवान दे लड़के सन, ते आप दीवानगी भी करदे रहे, फिर अतालीक बने, हमेशा उच्चे उच्चे रुतबिया ते पिता रहा, ते आप रहे, कदी मांझे नहीं सन। पर सतगुरु ने कहा जे थे रहना ही तो फिर पांडे ही मांझे कर। रोज रोज लंगर दे पांडे मांझदिया और रंग रतड़िया की महफिल विच रहिंदिया, रंगे हुए मनुखां दी महफिल विच रहिंदे आया, मन दी कालक हंकार मिटदा गया, मिटदा गया, मिटदा गया। सही मैने पांडे मांझना मन मांझना हो गया, शरदा नाल करे मनुख ऐसा हो जाता है। फिर माहौल ऐसा सी रंगरतणिया दी महफिल, अभ्यासियां दी महफिल, शरीकां नूं किधरे पता चल गया, सौरा परिवार दुखी होके मुल्तान तो आनंदपुर साहब पहुंचया, भई हद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह ने कदर ही नहीं की थी, इन्ना रोशन दिमाग बंदा, इन्ना पढ़ा लिखा बंदा, नवाब ते शहनशाह जिन्हों दीवानगी बख्शते रहे ने, सतगुरु ने कदर नहीं की थी। ਸ਼ਰੀਕ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ਰੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਰੱਖੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਦ ਨੱਸੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੂੰ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੀਆਂ ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੁਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸ ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤੋ ਵਾ ਜ਼ੌਕੇ ਕਜ ਕੁਲਾਹੀ ਨੇਸ ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਆ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਦਾ ਹੈ ਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋੜਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸ ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤ ਵਾ ਜ਼ੌਕੇ ਕਜ ਕੁਲਾਹੀ ਨੇਸ ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਮੰਗਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜੇਵਾਂ ਉਂਜ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
1: ਆਣਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ
0: ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਲਾਤ ਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ लोभ अंदर दा शांत हो जांदा है मिट जांदा है। हां जी
1: मन नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी।
0: हे मन तां ते तू अन दिन नाम जप नाम दे जो है ध्यान जोड़ दिन रात नाम ही जप नाम ही जप ना मंग मनुख कोल। हां जी
1: उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी।
0: संत जनां दा उपदेश सन गुरु पीर पैगंबरां दी बाणी सुन ताके जमां दी मुथाजी लोकां दी मुथाजी तेरी मिट जाए बंदियां कोल मंगना तेरा मिट जाए। हां जी
1: जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा ते लागे गुर की बाणी।
0: रहमत हो जाती है कृपा हो जाती है पुरबले संजोग आते ने ओ प्रभु फिर तेरी बाणी नाल ही जुड़ते ने ते तेरे को ही मंगते ने। हां जी
1: कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्व जियां दयाल।
0: हे प्रभु जो तेरी दात है उदी की कीमत ओ सीमा दे च नहीं है तेरा दिता होया सीमा दे च नहीं है असीम है असीम है। मैं ऐसा देखे अगर कोई अनुभवी कवि है तो वह भी कह देंदा है कविता का अंत नहीं है असीम है असीम है संगीत का अंत नहीं है असीम है असीम है ज्ञान का अंत नहीं है असीम है अजीम है। ते हे परिपूर्ण परमात्मा पदार्थों का भी कोई अंत नहीं है असीम ने असीम ने तू असीम है तेरिया दातां भी असीम ने। ए परिपूर्ण परमात्मा कौन कीमत पावे कौन नापे कौन तोले तू मनुख नू महान बना देंदे क्योंकि तेरी दातां असीम ने जिन्हां दा कोई मुल नहीं कोई कीमत नहीं। हां जी
1: सब किछ कीता तेरा वरता क्या हम बाल गोपाला।
0: ए परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरी कृत है असी ते तेरे बच्चे हां तू साडा पालनहारा है पिता दी तरह है असी तेरे बारक हां। हां जी
1: राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला।
0: लख गलतियां करदा है बच्चा प्यो फिर भी कठोर नहीं आंदा दया दे घर विच आके बच्चे नू गल नाल लांदा सारियां दातां जो है देना है। हे प्रभु तेरे बच्चे आ सदीवी गल नाल राई रख इस तरह साड़ी पालना कर जिमें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करता है। हे प्रभु हर वक्त अपने चरणा नाल जोड़ी रख हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए। इतनी सेवा प्रवान काफी समा हो गया बाकी विचारा कल दूसरी बेनती है कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनोपुर का लै जिन्हां नाल दास दा बड़ा पुराना प्यार सी 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलदा आया बड़ियां खेडां मैं उन्हां दे नाल देखियां उन्हां कोल देखियां बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक दा दीवान कल दा कन्नूपुर काले सजेगा। दास दे नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने प्रचारक आए हुए ने कवि सज्जन ने ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे ते दास भी 4 to 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलदा रहेगा 6-7 बजे तक। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है जिन्हां कोल समा वैसे कल इतवार है ते बाबा जी दी तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां जिन्हां ने जाणा वह गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वह 2 बजे इत्थे पहुंचण की कृपालता करन बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां वह संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना फुल सुग दी शमा वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ਅਨਕ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰ ਵਾਹੁ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਓਢਾਇਆ ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ਅਨਕ ਸਾਜ ਸੀਦਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ

0: सारो दिन से मजूरी करता तो मुसला कराया खेल पयो बेगारी न्याय कर का काम न आया पयो अनुग्रह जाका प्रभु को किस हृदय नाम वसाया सार संगत का पाछा परे जानो नानक हर रस पाया पयो अनुग्रह जाका प्रभु को किस हृदय नाम वसाया साध संगत का पाछा परे जान नानक हर रस पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु रूप सत्संग जी सनेमर फतेह कबूल करने वाहुर जी का खालसा वाहुर जी की पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विशा प्रकरण चल रहा है जीवन दे लक्ष्य नूं समझे बिना जीवन बतीत करना व्यर्थ है। जीवन का लक्ष्य की है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुताला करेंगे किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है। ये एक साधन से लक्ष्य नहीं से किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है धन संपदा है। इस तो अगे अज तक मनुख दियां निगाहां नहीं गई, इतें ही रुकियां इतें ही रुकियां। तो साहब कहंदे ने यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन नूं लक्ष्य समझ लिया तो कुदरती गल है जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य तो असल दे भुल जाएगा भुल जाएगा। तो लक्ष्य बनिया हो लक्ष्य भूलिया हुआ इसे वास्ते अब